0: आवाज़ी ताजिक आकाशवाणी आपका स्वागत है हमारे प्रसारण में। रेडियो आवाज़ी ताजिक 4 बजे दुशंबे नगर और साढ़े 4 बजे भारतीय समय के अनुसार एक घंटे के जारी प्रसारण हो जाता है। आप हमारे प्रसारण में ताजिकिस्तान के नैतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, इतिहास और जीवन के बारे में दिलचस्प टिप्पणियाँ आठ भाषाओं ताजिकी, दारी, फारसी, रूसी, उज़्बेकी, हिंदी, अरबी और अंग्रेजी में सुन सकते हैं।
1: سجی پیاریس نیوالو آب ریدیو زی توجی کندی کند کو سیدیا کشمه سن رای بیب که سطح شویر نیوزو و اور هماره پردیسار علی شرشیر علیه. ایسا گنته که موک

हस्तनिर्मित शिल्प उपादायों के 5000 अधिक नमूने उदाहरण के लिए प्राचीन दाने और सजावटी कला पाया जाता है। खुलबुक नगर से पाए हुए उत्पादों के नमूनों में से पुरातत्वविदों को सबसे पहले जानवरों के हड्डियों मिला है। चित्रों के निष्कर्षों की दीवारों का विशेष महत्व दिया जाता है। अधिकांश वैज्ञानिक जैसे समझते है कि मध्य एशिया में इस्लाम के विस्तार के साथ कला के सहपतियाँ गायब हो जाती है। 11वीं सदी में नाहकी लेखक के कहने के अनुसार ऐसे चित्रकारी गजल के महल और अफगानिस्तान में मौजूद है तथा इसके कहने के अनुसार खुलबुक में समकालीन निर्माण वस्तु को पुष्पी करती है। आप खुलबुक नगर के ऐतिहासिक स्मारकों के निष्कर्षों के लिए धन्यवाद। निष्कर्ष पाया जा सकते है कि मध्य एशिया में मध्यकालीन कला की भी मौजूद है। इसके अलावा खुलबुक में बहुत ऐतिहासिक चीजें कांस्या और पाउंड से काउंटर पाए गए हैं। हथियार के हड्डियों बना हुआ शतरंज बहुत ही बेमिसल है। इसके अतिरिक्त पत्थर के उपयाओं भी पाई गई है। निचली महल 9 और 10वीं सदियों में और उत्तरी महल 11 और 12 सदियों में अस्तित्व किया गया था।

Полюбов ми унесо тирпан ор унесо чован ми пурат ответ кария кия гая хи. Сати сан унесо сатаван ор унесо чоран ве ми Давидович ор Литвинский двара ор сан 2003-2006 так Якубов Тарасе бхи усе кам кие гае тхи. Кене ка лайк е ки Таджикистан париятан ке репикшай се дуня ке сабсе викасит дешо ми се е хи. Противарш деш ке ऐतिहासिक और दर्शनिक हालों के देखने के लिए सैकड़ों यात्राओं ताजिकिस्तान में आते जाते हैं। इसको देखकर शांति और राष्ट्रीयता के संस्थापक रशा के नेता ताजिकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति महामहिम इमोमाली रामो ने देश में सन 2019-2031 को ग्रामीण पर्यटन और लोक शिल्प विकास का वर्ष घोषित की। आजकल ताजिकिस्तान के इर्द गिर्द इलाकों में अतिथियों और पर्यटकों के लिए सभी संभावनाएं बनी गई है। ताजिकिस्तान के राष्ट्रपति माली रामों के आदेश से देश के सभी नगरों और गांवों के ऐतिहासिक स्थल पुनर्निर्माण और जीवित हो गई।

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है, पूर्व अधिकारिक और सप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्यावस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।

हस्तने लिए शिल्प उपादायों के 5000 अधिक नमूने उदाहरण के लिए प्राचीन दाने और सजावटी कला पाया जाता है। खुलबुक नगर से पाए हुए उत्पादों के नमूनों में से पुरातत्वविदों को सबसे पहले जानवरों के हड्डियों मिला है। चित्रों के निष्कर्षों की दीवारों का विशेष महत्व दिया जाता है। अधिकांश वैज्ञानिक जैसे समझते है कि मध्य एशिया में इस्लाम के विस्तार के साथ कला के सहपतियाँ गायब हो जाती है। 11वीं सदी में नाहकी लेखक के कहने के अनुसार ऐसे चित्रकारी गजल के महल और अफगानिस्तान में मौजूद है तथा इसके कहने के अनुसार खुलबुक में समकालीन निर्माण वस्तु को पुष्पी करती है। आप खुलबुक नगर के ऐतिहासिक स्मारकों के निष्कर्षों के लिए धन्यवाद। निष्कर्ष पाया जा सकते है कि मध्य एशिया में मध्यकालीन कला की भी मौजूद है। इसके अलावा खुलबुक में बहुत ऐतिहासिक चीजें कांस्या और पांच से काउंटर पाए गए हैं। हथियार के हड्डियों बना हुआ शतरंज बहुत ही बेमिसल है। इसके अतिरिक्त पत्थर के उपयाऊ भी पाई गई है। निचली महल 9 और 10वीं सदियों में और उत्तरी महल 11 और 12 सदियों में अस्तित्व किया गया था।

स्वतंत्रता राज्य का प्रमाण है, पूर्व आधिकारिक और संप्रभुता राज्य की व्यवस्था और राष्ट्र की महानता है जो देश के घरेलू और विदेश नीति अर्थव्यवस्था सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को बढ़ावा देती है।